कथ अकथ विचारो एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभ पह कर विनंती मिले हर जस लान बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथाह सह अटल गणया पूरन संजोगो राम सुख है समूह भया गया वे जोगो राम मेल संत आए प्रभ ते आए

मन प्रीत उपजी मानियां मेल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मिली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा तरत सपागी राम प्रभ कर आए अड़ा गोर चरणी लागी राम।

मेरी आस पूरी संत तोरी, हर मिले कंत विछुन्या, आनंद आनंद न बजहे वाजे, अहं मत मन की त्यागी, बिनवंत नानक शरण स्वामी, संत संग लिव लागे, आनंद आनंद न बजहे वाजे, अहं मत मन की त्यागी, बिनवंत नानक शरण स्वामी, संत संग लिव लागे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। बिलावल महला पंजवा, छंत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मंगल साज भया, प्रभ अपना गाया, राम अविनाशी वर सुनिया, मन उपजया चाया, राम।

आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जिने वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबान क्या नाही कर तेरा कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनहो संतहो शब्द तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागा कर सुभागा शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनद सुनहो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पारे पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा
ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈ ਆ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਆ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸਲੋਕ।

बोलो जे पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के आनन डिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोल दे वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सांस वासना निभाही।

बोलों जे प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। सिखानू सिखी दान केस दान रहत दान। विवेक दान विसाह दान भरोसा दान। दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगा जुग अटल। धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। सिखा दा मन नीवा मत उची। मत पत दा रख आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जिया। श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारे गुरतमा दे जिना तो पंथ नू भी छोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान।

गोपाल तेरा आरता जो जानो तुम्हारी भगत करंते तिनके काज सवारता गोपाल तेरा आरता जो जाना तुम्हारी भगत करंते तिनके काज सवारता रहा दाल सीधा मांगा कियो हमरा खुशी करा नित जियो पनिया छादन निका अनाज मंगाओ सात सिका

दर्शन परसया गुरु का जानम मरण दुख होवा सिफत खसाम दीन उर अरसह कुरसह।

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुदाई दाया, खिलै सगल जगत चंगियाइयां।

मंडला खंडावर पंडा अंड जजेर उत्पुजा खानी से जा सो मित जान नानका सरा मेरा जनता नानक जिनत पाए कै समाले सपना जिन करता करना किया चिंता भी करनी सो करता चिंता करे जिन उपाय जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस्ती बाणिया पग ना करता करना किया चिंता भी करनी सो करता चिंता करे जिन उपाय जग तिस जुहारी

थोड़ी सच्चा साहेब एक तो दिन सचो सच बताया, जिस तू दे तिस मिले सता तिनी सच कमाया, सतगुर मेरा सच पाया जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सा न जाननी मुखी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया, विच दुनिया का है आया।

0: सगल पवन तारे, एक थे किए बिस्थारे, पूर रे ओ सर्व में आप है नरारे, हर गुण नाही अंत पारे, जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मरारे, आप ही तारण तारे, कुदरत है देखारे, वर्ण चहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हाँ के बल बल बल बल सद बलिहा, सर्ब गुण निदान कीमत ना ज्ञान ध्यान, ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थान, मन तन तेरो प्राण एक है सूत है जहान, कमन उपमा देओ बड़े ते बढ़ान, जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ, अकल कला है प्रभ सर्ब को तान, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हाँ के बल बल बल बल सद बलिहा, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हाँ के बल बल बल बल सद बलिहा।
1: निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत निर्मल बेगासी, गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी, जांको हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी, तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो, हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो, तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो, हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो।
2: सत सत हर सत सत सते सत पणिया, दूसर आन न अवर पुरख पौ रातन सुनिया, अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए, जे रसन चाखे तेह जन तृपत उगाए।

0: जग तारन को अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो।
1: जनक सोए जिन जानिया, उन मन रथ धरिया, सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया, अकथ

देवियाँ एहने सहज सोभाए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अर सोह कुरसो चटिया तुद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोइया सबना दा विसाह सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोइया सबना दा विसाह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी बिलावल विद्या न पर बाद नहीं जाना हर गुण कथत सुनत बौरानो विद्या न पर बाद नहीं जाना हर गुण कथत सुनत बौरानो

मैं बिगड़े अपनी मत खोए, मेरे परम भूलो मत को। जो अपना पछाने आप पछाने, ता एक जाने अब है न माता सो कबहो न माता, कह कबीर राम रंग राता अब है न माता सो कबहो न माता, कह कबीर राम रंग राता का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बिलावल विद्या न पराओ बाद नहीं जानाओ, हर गुण कथत सुनत।

चित आवे, चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब, तहां तहां रसिया रियायत देग तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ के जेता, श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, सहा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बोंगे, जुग जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। सिखां दा मन नीमा मत उच्चे, मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे, जिन्ना तो पंथ नू विसोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभार दा दान, खालसा जी नू बख्शो हे नमानियां दे मान। नतानियां दे तान, नियोटियां दी ओटा, तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र स्थान, सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर सबद चौंके, आनंद साहिब जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करने सच्चे पातशाह जीओ, जिन्ना जिन्ना गुरमुखां प्रेमियां वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है। तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास। सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू, आपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा, नाम दान बख्शना, सुभ भावनावां पूरियां करनियां। आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है। दर परवान होवै, परवान होया प्रसाद, संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो। सुख होवै नाम चित आवे, सिख पढ़दे सुणदे सरबत लाहे बंद होवन। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा।